चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बद

चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत कुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शह करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

0: from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Mark Gittel.
1: National Assembly Speaker Moses Wetangula has called for the speedy completion of the rehabilitation of Masinde Muliro Kanduyi Stadium in Bungoma, saying the facility will help nurture sports talent and boost the region's economy. Following an inspection visit, Wetangula and Sports Cabinet Secretary Salim Mvurya said the project is on course for completion by October.
2: Kuweka viwanja vya kucheza michezo ya basketball, ya netball, ya volleyball, ya handball, na baadaye pia tuongeze public swimming pool.
1: Police in Meru County have arrested a suspect linked to a network that buys and hides stolen property. During an operation in Maili Tatu, Mawo police officers recovered suspected stolen items, including mobile phones, phone covers, TV remote controls, audio equipment, and household goods. The suspect remains in custody awaiting court appearances. Police warn that handling or buying suspected stolen property is a criminal offense. Three suspects, including Nairobi member of County Assembly Patrick Karani, have been arrested after detectives recovered a pistol loaded with 12 rounds of ammunition during an operation in Roasters, Nairobi. The other suspects are Stephen Kimathi Karimoni and Stanley Njogu Irungu. Preliminary investigations, according to DCI, indicate the firearm was being held without a valid license and the three suspects are expected to be arraigned on charges of unlawful possession of a firearm. The government has put in place strict measures to ensure the safety of buildings and structures. Antony Alando of Wonder Properties insisted that securing all necessary government approvals and delivering projects on time builds firm trust with off-plan investors. Alando emphasizes that when clients invest, they are buying into a transparent vision of progress and reliable quality.
3: If I go to a five-star hotel, yes, I'm in the five-star hotel, but are we approved? This is an off-plan. An off-plan means like someone is giving you their money. They are actually buying your vision. For you to see, like here used to be an account house and now it has been cleared, that gives us more credible.
0: East FM News. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
5: मंगल की सुबह है नैरोबी में खुशगवार मौसम है आप और हम हैं ईस्ट एफएम पर समकल की गैर हाजिरी का सवाल उठेगा कहां थी आप तो सर मैं पहले ही जवाब दे दूं इससे पहले कि 10 और क्वेश्चंस आ जाएं कि आप नहीं आई सर बात यह है कि मैं एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए गई थी जाना पड़ा इतने प्यार से उन्होंने बुलाया हुआ था सिख विमेन सोसाइटी है केन्या में पुरानी सोसाइटी है बहुत आला काम करते तो इन्होंने एक औरतों की कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी लेडीज तो समय इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कई विषयों पर बात हुई लेकिन कल जो थी जहाँ मैं गई वो पेरेंटिंग के मुतालिक थी मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी उसके बाद एक पूरा सेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था कि लोगों को आगाह करें कि एआई है क्या सब बड़े अच्छे दोनों मौजूआत अच्छे थे बस मैं यही कह सकती हूँ कि समय जिस कदर उन्होंने इस्तकबाल किया हमारा मैं बहुत खुश हूँ बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ ऑन एयर सबके सामने सिख विमेन सोसाइटी का और समिन वेल डन कहूँगी बहुत ही अच्छा था वेल ऑर्गेनाइज्ड और किसी दिन मैं आपको बताऊँगी किन किन ने ऑर्गेनाइज किया था बट शाबाशी की मुस्तहक है और समिन आज की ख़ास खबर तो ये आग के कितने वाकयात हो रहे हैं भारत के कई शहरों में वो देखेंगे लेकिन पहले आपका मूड बनाना है इस गाने के साथ

0: क्या बात है किशोर कुमार की, सर मुझे लगता है कि ये लिखा भी उन्होंने खुद ही होगा, कई अल्फाज का पता नहीं चल रहा कि क्या हैं, लेकिन क्या अच्छा गाना था। अपने ज़माने का पहला पैगाम सना काना, आपको मिल गया जवाब, और चलते हैं सलमा के पास।
1: जो लोग दूसरों को बुरा बनाकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वक्त एक ऐसा आईना है जो चालाक से चालाक इंसान का भी नकाब उतार देता है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुमो।
0: नकाब उतर जाते हैं, कितनी देर करेंगे मुनाफकत हिपोक्रेसी। अच्छा, अब देखते हैं कि शमीम ने क्या कहा है। कहती, डिड यू नो योर सैलड इज टेक्निकली अ व्हाट, अ सेडेटिव। अच्छा, लेटिस कंटेन्स, जो ये लैक्टोकेरियम, पता नहीं कौन सी ये एक्सप्रेशन है, अ माइल्ड सेडेटिव। कहते आपको सुला देता है, इसीलिए लोग खा के कई बार लंच में ज़्यादा लेटिस खा के कहते उंगने लगते हैं। बहुत खूब। और यहाँ पर हैं जी, हाँ, रेखा वालिया कहते आज का लफ्ज पता है क्या है, दे दिया है उन्होंने। ओके, करेंगे रेखा के लफ्ज पर मुहावरा ढूंढेंगे 11 बजे के बाद, ठीक है। न्यू डे न्यू वीक, और मेरी लाइन है छलिया मेरा नाम, ये कहा है रूपल ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुनाइएगा, उन्होंने कहा है मेरे जहन में है, तो ठीक है, हम भी ज्वाइन करेंगे आपको। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। वेरी गुड रूपल, आप बहुत, इट वुड बी अ गुड थिंग कि कभी ना इनसे भी मुलाकात हो जाए अपने लिसनर से। समिन, कल गुरुद्वारे जहां हम गए हुए थे साउथ सी के, कितने लिसनर्स के साथ मुलाकात हुई जिनको कभी ना मिला, ना मैं मिली हूँ, ना सुना है उनको, और ना वो लिखते हैं और ना वो मैसेज करते हैं, लेकिन इट वॉज अ प्लेजर। अच्छा, अब चिराग पटेल, आपने कहा वेलकम बैक, थैंक यू। चिराग पटेल ने कल क्या किया था, वीकेंड का जो संडे का था, क्या किया था? मेरे ख्याल है उन्होंने लिखा था कि मैं तो गया हुआ था कंबूरु डैम, सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ एम्बू एंड मचाकोस काउंटीज, इट वाज कमीशन्ड इन 74, कंबूरु डैम टू जनरेट रफली 94.2 मेगावाट्स फॉर द नेशनल ग्रिड। समय बंद है ना केनिया में डैम डैम डैम, वो सब बनाते हैं बिजली, फिर वो बिजली हमारा जो नेशनल ग्रिड है ना उसको पहुँचती है, तो फिर सारी सारे मुल्क में। द डैम्स कैचमेंट सपोर्ट्स डाइवर्स मरीन एंड वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग फिश, हिपोज एंड क्रोकोडाइल्स। जो डैम है ना उसमें क्रोकोडाइल्स भी हैं। वी डिड अ पिकनिक देयर, क्या बात है, देयर इज अ प्ले एरिया। ये है मचाकोस काउंटी और एम्बू काउंटी के दरमियान कंबूरु डैम। समय याद रखिएगा, इनके चिराग पटेल के पास किताब होनी चाहिए, ऑनेस्टली, टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमारे हैं केनिया में। मंगलवार की मंगल कामनाएं वंदनीय प्रवीण जी के लिए, भरत गंगाराम इन लंदन, थैंक यू सो मच। रंजन विनोद भी लंदन में है, कहती हैं सभी दोस्तों को उनका नमस्कार। और प्यार अली भाटिया,
2: प्रवीण जी मैं जुम जुम जुम झुमरू, ये गाना फिल्म झुमरू का है, 1961 की मूवी है, जिसको किशोर कुमार ने गाया है और इसके धुन भी किशोर कुमार ने बनाए हैं। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: क्या बात है, प्यार अली भाटिया। अब समझने, अभी भी झुमरू था, मैंने सोचा कि चलो झुमका भी हो जाए।

कौन है हमारे रसीला रसीला शाह, बहुत शुक्रिया आपका. कहा है गुड मॉर्निंग परवीन जी, हाउ आर यू, होप यू हैड अ वंडरफुल वीक, लवली टू स्टार्ट जी. वो भक्कड़ झुमरू घुंगरू क्या था किशोर का मजेदार गाना था, कहती थैंक यू एंड बी ब्लेस्ड, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. और सबको मंगलवार की मंगल कामना. ईस्ट एफएम की कुकिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा लगा, रमेश हरिया ने कहा है समन ईस्ट एफएम का करोगा हमेशा से बहुत ही सक्सेसफुल होता आया, इस बार भी था. ब्यूटीफुल थॉट अबाउट लेटिंग गो, कहते हैं कि वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, वेदर इज टॉक्सिक हैबिट्स प्लेसेस और नेगेटिव पीपल, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स. समन इसीलिए कहते हैं छोड़ें वो बंधन जिसमें आपको सिर्फ दुख ही मिला हो, तो छोड़ के देखें बिकॉज आपके लिए नई स्पेस बनेगी, नई जगह मिलेगी आपको. और लखबीर कहते हैं कुछ लोगों की पूरी जिंदगी से सिलाई की तरह होती है, जिंदगी एक सिलाई की तरह होती है. ओके, कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद कहीं से टूट जाते हैं. बिल्कुल समझ, जो लोग समझते हैं कि हर एक को खुश करना है वो खुद दुखी हो जाते हैं. फिर व्हेन द वर्ल्ड पुशेस यू टू योर नीज यू आर इन परफेक्ट पोजीशन टू प्ले टू प्रे, ये मेरा ख्याल है रूमी का है जी. लखबीर थैंक यू, कहते हैं जब दुनिया आपको नीचा गिराने की कोशिश करे ना, आपको दबाए, आपको घुटनों पे ले आए, तभी तो वक्त है कि आप खुदा की तरफ, अपने भगवान की तरफ रुजू करें. बहुत खूब लखबीर रसिला. परवीन जी जे आर डी टाटा वॉज अ विजनरी लीडर, वाह. जे आर डी महल रतन के फादर थे या खुद थे वो, हु हेल्प शेप मॉडर्न इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज एविएशन इंडस्ट्री. बॉर्न इन पेरिस 1904 ही चोज इंडिया. जी मेरे ख्याल ये रतन के फादर थे. ओके, चोज इंडिया एज हिज होम एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू बिल्डिंग बिजनेस दैट वुड ट्रांसफॉर्म द नेशन. बिल्कुल राइट, एट 24 ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस पायलट. इन 32 he launched Tata Airlines with an investment of 2 lakh rupees and personally flew the aircraft. The airline later evolved into Air India. Ji, mere khayal hai ab phir se unhone Air India kharida hai. They've just re-bought it kyunki bik gaya hua tha. Aur phir Air India ki halat itni achhi nahi thi, unhone wapis liya hai. Ab dekhte hain. ML Vishwakarma ne kya kehna hai? Pehle samin झुमके की बात है ना, वो कर लें.

बस हमें ये लखनऊ में एक आग का वाकया हुआ है, कई और शहरों में भी हुआ है भारत के, आग लग गई इमारत को, आग लगी है जहां एक ट्रेनिंग सेंटर था, सम वो ट्रेनिंग सेंटर राख का ढेर बन गया, छात्र और कई

0: और सर रूपल की फरमाइश थी लेकिन आरफा फ्रॉम उंगाटा रुंगाई कहती है ये फिल्म छलिया से आपने लिया है, कहती हैं कि राज कपूर की बेहतरीन फिल्म थी छलिया, कहती हैं वो ज़माना था जब फिल्म साज जो थे समिन फिल्में बनाने वाले वो अमन सुख शांति और भाईचारे पर फिल्में बनाते थे, वो बदअमनी नहीं फैलाते थे, लेकिन आजकल आरफा तमाम फिल्में किसी न किसी तरह से किसी न किसी के धर्म पर हमला हैं, किसी की रंग और नस्ल पर हमला हैं और लोगों को उकसाने का ज़रिया है कि आप उठ खड़े हों, जो आपके साथ वाले हैं, जो आपके हमसाए हैं, जो आपके मुल्क के रहने वाले शहरी हैं उनके खिलाफ उठ खड़े हो, ऐसी फिल्में बन रही हैं। आरफा थैंक यू, आपने कहा छलिया में नूतन और राज कपूर थे, कमाल है। और अब चलते हैं, सबसे पहले तो बात करनी थी, एम एल विश्वकर्मा ने मैसेज भेजा था कि देखो हर एक को आपकी सलाह नहीं चाहिए, एडवाइस कभी कभी सिर्फ सुन लिया जाए, किसी का हाथ पकड़ लिया जाए तो कहते हैं कि इतना ही, किसी को समझ लिया जाए उतना ही काफ़ी है। एम एल विश्वकर्मा ठीक। अमीर अली राणा ने कहा है कि सॉरी टू हियर यू आर नॉट फीलिंग वेल। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं नहीं वो तो मैं कल का बता रही थी कि मैं कहाँ गई हुई थी और माफ़ी मांग रही थी कि मैं कल नहीं आई। थैंक यू अमीर अली राणा। और यस रतन के फादर थे, रतन टाटा के JRD, उनको बुलाते ही JRD थे, रसीला ने क्लियर कर दिया। दिनेश पोपट सिडकप कैंट कहते वी मिस्ड यू यस्टरडे, हैप्पी टू हैव यू बैक, एन्जॉइंग द शो। दिनेश पोपट और यासर क्या कहते हैं, कहते हैं आज के दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 पे बम रख दिया गया था 1985 में, अ सूटकेस बॉम्ब प्लांटेड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट एक्सप्लोडेड ओवर द अटलांटिक ओशियन, 329 पीपल डाइड। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा शैतान पैदा हुआ है जिसने वो सूटकेस रखा, उसने उसको पता होगा कितने लोगों की हलाकत होगी लेकिन उसने रखा, उसको कुछ बुरा नहीं लगा, किसी चीज़ किसी आवाज़ किसी अंतर से उसकी आवाज़ नहीं उठी कि ऐसा ना कर कातिल, उसने किया। इंक्लूडिंग 24 इंडियन नेशनल्स डाइड इन दिस बॉम्बिंग 1985, दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक इन्वॉल्विंग एन एयरक्राफ्ट प्रायर टू 9/11। कहते 9/11 तो जो हवाई जहाज इस्तेमाल हुए दहशत के लिए, ये तो बॉम्बिंग जो थी उससे पहले हुई थी। बहुत अच्छे। कहते राज बब्बर आज 74 साल के हो गए हैं, मुकेश खन्ना 68 साल के। बहुत शुक्रिया यासर। चंद्रिका वासंत गोसाई बहुत इंजॉय कर रही हैं आप गाने, अच्छी बात है। बिकॉज पीपल डोंट बॉदर टू चेक रेगुलरली अ वेरी ओल्ड इलेक्ट्रिक वायर्स, दैट्स वाई शॉर्ट सर्किट। ये मैं कह रही थी कि भारत के कई शहरों में कई वाक़यात हुए हैं, बड़ी इमारतों पर आग लगी है और फिर बचाव कार्य में सिफर, लोग इतने जान से जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि पुरानी वायरिंग है, पुरानी तारें जो बिजली की लगी हुई हैं उनको करते नहीं हैं ठीक, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी में आग लगती है, इससे ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, शॉर्ट सर्किट के भी वाक़यात हुए हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ देखते हैं क्या कहना है।
1: छलिया मेरा नाम, ये गाना फिल्म छलिया का है, 1960 की मूवी है जिसको मुकेश ने गाया है और जिसको कमर जलाल अबादी ने लिखा है और जिसकी धुन कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है और ये गाना राज कपूर पर फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच प्यार अली भाटिया। और आया है एक और मैसेज मिस्टर एम एल विश्वकर्मा, कहते हैं कि पता है आग क्यों इतनी लग रही है, प्राइमरीली द कॉज इज एजिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम्स। वही हुआ ना, तारें वहीं छोड़ दो जब तक आग नहीं लग जाती। और कहते हैं कि आउटडेटेड outdated heating equipment and missing structural fire breaks. समिन कुछ चीजें हैं जो कि बिल्डिंग जब इमारत बनती है उनको नाफिस करना चाहिए लेकिन ये हो नहीं रहा. कई मुल्कों में होता है, मुझे लगता है हमारे मुल्क में भी ऐसे नियम नहीं हैं कि सुरक्षित हों इमारतें.

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
1: Austin ODM Secretary General Edwin Sifuna has vowed to take legal action after his removal by the party's National Executive Council. In a Linda Mwananchi press briefing, Suba North Member of Parliament Carol Lemundi said the decision was unfair, unprocedural, and contrary to the party constitution.
2: The decision bears similarities with the first one in February. Procedural, unfair, and contrary to the party's constitution. After consultation with our legal teams earlier this morning, it has been decided once again test the propriety of the purported ouster in the courts.
1: Busia Women Representative Catherine Omanyo in a statement has called for comprehensive compensation for victims affected during demonstrations. Omanyo termed that the process must reflect the extent of harm suffered. She further argued that no claims should be dismissed, noting that stigma and fear may have prevented some victims from reporting their losses. Former Deputy President Rigathi Gachagua has intensified his legal challenge against his impeachment by appealing most of the High Court judgment that upheld his removal from office. The case now shifts to the Court of Appeal, setting stage for a fresh legal and political showdown over the constitutionality of his impeachment process. Barring Mother Karua from entering Uganda is not only a violation of the East African Community Treaty, but also breaches the East African Community Common Market Protocol. IRX Pacto Chingonela says the move signals a failing regime and could create fear among cross-border traders, prompting them to scale back regional business activities.
3: The presidency in Kenya and the presidency in Uganda have the same inkling toward disrespect of court orders, wanton spread of injustice and human rights violations.
1: A person may be denied entry into the East African Community member state if authorities determine they pose a security threat or intend to incite a revolution. Constitutional lawyer Ekuru Okot says the EAC treaty guarantees citizens of member states the free movement of people, goods and services across the region, subject to exceptions provided under the national and regional laws. Director General of WHO Tedros Ghebreyesus says more than 1,000 confirmed Ebola cases, including 254 deaths, have been recorded in the Democratic Republic of the Congo, warning that much more support is needed to contain the outbreak. Tedros noted that 100% patients have recovered, demonstrating that timely treatment can save lives, but called for additional treatment centers, healthcare workers, testing capacity, community engagement, and sustained international support.
0: East FM News.
4: East FM.
5: East FM.
0: East FM.
5: Kenya's premier Asian mix.
0: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
6: Samay dusra ghanta shuru ho gaya hai. Ab dekhein. Kehte hain ki ek gana abhi aapne sunaya film Fakira ka. To kehte hain ki main na mujhe yaad aa gaya wo din jab main Manjula Vishwakarma ko पहली बार देखने गया था ग्वालियर तब हमारा रिश्ता तय हुआ था तो जब भी ये गाना आता है इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मिस्टर एमएल विश्वकर्मा बहुत अच्छी याद आपने हमारे साथ शेयर की है शुक्रिया इट्स आल्सो अ वायलेशन ऑफ परमिशन ग्रांटेड और ये कहा है किसने कल्पना ने कल्पना कहती हैं कि ये आगजनी के जो वाकया दिस बिल्डिंग इन लखनऊ वाज सपोज्ड टू बी रेजिडेंशियल एंड इट हैज बीन मेड कमर्शियल देखें दिस मस्ट बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कल्पना फॉर सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ आई थॉट इट वाज आर्सन लेकिन नहीं ये एक्चुअली फायर ही है Just like Nairobi, where permission is granted for how many explosions? Yeah, मैंने सुना है कि पहले कहने लगे एक दिन जो हमारे गवर्नर थे कि 12 से ऊपर नहीं जाएंगे। अब कहते हैं नहीं पता क्या बात ये है कि कई इलाकों में आप 18 भी कर सकते हैं। मैंने तो 20 से भी ऊपर देखी हैं। सो कुछ पता नहीं कल्पना यही मैं कह रही थी कि हमारी buildings यहाँ कहाँ सुरक्षित हैं? तूने वो रंगीले कैसा जादू किया कहते हैं फिल्म कुदरत हेमा मालिनी और राजेश अच्छा सना थैंक यू और आए हैं अजय
7: परुण जी सबसे पहले आपसे मुलाकात इतवार के दिन हुई बड़ा अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया परुण जी अब ये जो कोचिंग सेंटर की बात हो रही है दरअसल इसमें ये वायरिंग और ऐसे कोई कारण नहीं है इसका मेन कारण है परवीन जी जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आजकल कंपटीशन बहुत हो गई है इंडिया में कोचिंग सेंटर की तो वो क्या है, एक दूसरे को छोटा या नीचा दिखाने के लिए या उसको उसकी कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए ऐसे हादसे हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा पटना में क्या हुआ था, खान सर जो बहुत ही फेमस है उनके कोचिंग सेंटर में क्या हुआ, और पिछले दिनों उनके उन्हीं के सेंटर पे बम भी चलाया गया था, बम फेंका गया था, जो बाल बाल बचे थे, ये पुरानी थोड़ी सी खबर है। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी की साजिश है और इस सोची समझी साजिश के कारण नहीं बचाया जा पा रहा। उन्हें मालूम है कि कौन से तले पे आग लगाई जाए, कौन से फ्लोर पे लगे जिससे कि ज़्यादा नुकसान हो, ये मुझे लग रहा है। परम जी बहुत बहुत शुक्रिया।
6: या ये जो कंपटीशन हो रही है ना, आपने ठीक कहा कि कंपटीशन जो है कोचिंग सेंटर ओनर्स के दरमियान, वो एक दूसरे पर हमले करवाते रहते हैं और आग जनी के वाकयात हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन समिन मुझे नहीं पता कि हुकाम कुछ कर भी रहे हैं या कि बस आंखें बंद करके देखते जा रहे हैं।
8: जी वेलकम ट्यूसडे, सारे नमस्कार।
6: थैंक यू सो मच इंडीड। अब समिन आगे चलते हैं, ढूंढो ढूंढो रे बालाइक।

रमेश हरिया, आपने कहा है कि कोचिंग सेंटर में हादसे के मेन कारण सेफ्टी की ओनर रिश्वत दे के सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं और बच्चों की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान, तो वालदैन क्यों ऐसे कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को भेजते हैं और लिमिट से ज़्यादा भर्ती भी हादसे की वजह बन जाते हैं। ये भी ठीक है कि बिल्कुल अनसेफ बिल्डिंग्स में ये कोचिंग सेंटर्स शुरू किए गए हैं, और जैसे कि अजय पाल ने कहा कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी हमला हुआ था, और बता दूं समीन, अजय पाल हमारी संडे के दिन इकट्ठे थे हम करोगा में, बहुत अच्छा लगा अजय पाल से बात।

0: भरा डुएट्स हमें ना आपने सुना और कई बार सुना है, बहुत ही अच्छी टीम थी इन दोनों की। अब देखते हैं मंजुला विश्वकर्मा।
1: नमस्कार परवीन जी, आपको और सबको। परवीन जी, कल तो मैं खुदगर्ज हो गई थी, पता है क्यों? कल हमें पूजा के लिए मुंबई जाना था, तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे और मुझे पता था कि मैं शाम को लौटूंगी तो कल का बेमिसाल सुनने से हम लोग वंचित रह जाएंगे। पर लौटते समय जब मैं ट्रेन में मैसेज देख रही थी कि कल आप नहीं आई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सोचा चलो हम नहीं सुन पाए उसका अफसोस नहीं रहा, और विचार आया कि आप भी किसी अच्छे काम में व्यस्त होंगी, और देखो सही निकला।
0: Okay, मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो वहाँ भी आम तौर पे मैं ना कर देती हूँ, पर मंजुला ये जो एक जो ऑर्गेनाइज़र थी पिंकी विरदी और रतन जाना, उनके कहने पर मैंने कहा नहीं, ना करना अच्छा नहीं लगता, तो एंड आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। अच्छा अब यासर आप क्या कहते हैं, आपने कहा है कि एक भयानक आग लगी थी अलीगंज एरिया ऑफ लखनऊ में, इट क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 14 टू 16 पीपल ऑन जून 22। अच्छा ये भी लखनऊ में थी। द इंसिडेंट वॉज एक्सेसबेटेड बाय लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिट्स, ट्रैप्ड ऑक्यूपेंट्स एंड डिलेड एस्केप रूट्स। वो कह रहे हैं कि इन इमारतों से, जैसे कि लखनऊ में अलीगंज इलाके में हुआ, वहाँ से बचाव मुमकिन ही नहीं था। इमरजेंसी के लिए जो रास्ता है समय वो ब्लॉक्ड था, कि अगर हादसा होता है तो लोग कैसे भागेंगे, वो इमरजेंसी एग्जिट होती है, तो नहीं था। ट्रैप्ड ऑक्यूपेंट्स कहते हैं वो लोग अंदर ही फंस गए। और ये अभी जो हुआ है ताज़ा वाक्या, इसमें कहते हैं कुछ बच्चों ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया, वो भी आग की लपेट में आ गए। एंड डिलेड एस्केप रूट्स के ना, बचाव के लिए भागने का जो है समय जलती हुई इमारत से वो ज़राए नहीं होते कि कैसे भागना है, समय ऐसी बिल्डिंग्स को कैसे खुला रखा जा सकता है। और कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट द फायर ओरिजिनेटेड इन द एसी डक्ट ऑन अ मिडल फ्लोर व्हाइल रैपिडली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द थ्री स्टोरी। कहते हैं एसी के समिन सिस्टम में कुछ खराबी हो गई डक्ट में और आग वहां से भड़की है। कहते हैं सेफ्टी लैप्सेस, इन्वेस्टिगेशंस फॉलोइंग द ट्रेजेडी रिवील मेजर सेफ्टी कंसर्न्स। सुरक्षा के तो कोई नियम पर चलता ही नहीं है। The building only had a single staircase, सिर्फ एक सीढ़ियां थी बस, it lacked emergency exits थे ही नहीं।
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: It's 11:19.
2: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और समन कहा है अरफा उंगटा रुंगाई कि आपको पता है ना कि यहां पर भी कानून के मुताबिक हर साल आपको किसी भी बड़ी इमारत में जो कि शहर के केंद्र में हो वहां पर फायर ड्रिल्स करनी लाजमी है। फायर ड्रिल्स हमें वो होती है कि आपको कहा जाता है कि देखो आपने रेडी रहना है, अगर आग लगती है तो क्या करना है, वो आपको सिखाते हैं फायर ड्रिल में, आपको बताते हैं किन रास्तों से आपने निकलना है, भागना है, लिफ्ट लेनी है, सीढ़ियां लेनी है, कहाँ जाना है, निकलना किस रास्ते से है। अगर आपकी इमारत में बिल्ड है एग्जिट्स इमरजेंसी तो फिर आपने ये लेनी है, वो लेनी है, वगैरह वगैरह, वो सारा समझाते हैं, वो करके दिखाते हैं। दैट इज़ वाई उसको कहते हैं फायर ड्रिल। समय रेडियो अफ्रीका की बिल्डिंग में बिला नागा हर साल फायर ड्रिल होती है। समय यहाँ तक के हम जो है फायर आग बुझाने वाली गाड़ी को भी बुलाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो आती है तो कहाँ से वो करेंगे काम और आपने क्या करना है। और समझ ये ड्रिल भी करीब आधे घंटे से ज़्यादा होती है और हम सब बाहर असेंबल होते हैं। मैं भी कई बार प्रोग्राम से अचानक ही निकल गई हूँ तो तब वो फायर ड्रिल चल रही थी। अच्छा, और सलीम क्या कहते हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। बी थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी इन योर लाइफ, good or bad, past or present, they are all made you the person that you are today. Praveen, you missed badly yesterday. Good morning to you and all your lovely Bemisar listeners and have a lovely day.
0: Thank you, Salim. I wish I had written. मैं आपको मैसेज कर लास्ट टाइम किया था, इस दफ़ा भी कर देना चाहिए था कि इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं कहीं और जा रही हूँ, सिर्फ एक दिन ही था। और कृष्ण सरोई कहते हैं कि कोई बता सकता है, IIT हैं समिन भारत में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो कहते हैं कई हैं भारत में लेकिन पहली कब खुली थी, कौन सी थी? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट पहली कब खुली थी?

0: सबसे पहले जवाब देने वाले कृष्ण सर्वे के सवाल का है चिराग पटेल. आपने कहा है द फर्स्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट वाज ओपन इन 1950 इन हिंदी वेस्ट बंगाल. मगरबी बंगाल में पहली आईआईटी खुली थी, ये बात चिराग पटेल ने की है. उम्मीद है कि ये ठीक ही होगी.
1: मैं गाना वा प्रदीप कुमार गा रहा है, पाओ छू ले ले तो हुलो की कनायत होगी. जो प्रवीण जी आ जाती है ना उदो सारे मजेदार टिप टॉप गाने मिलते हैं सानू सुनने लिए. थैंक यू जी.
0: टॉप गाने ये अच्छा लगता है. एक मेरे लिसनर थे, वो कह रहे थे कि आप सुपर गाने सुनाते. फिर दो चार दिनों के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपके गाने सुपर से ऊपर हैं.
2: नमस्कार. पता नहीं मेरा मैसेज नहीं पहले गया, मैंने पहले भी डाला कई बार, रिकॉर्ड नहीं होता. प्रवीण जी, हम एब्सेंट होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एफएम की वो ग्रेट पर्सनैलिटी एब्सेंट हो जाती है ना, तो हम सभी सभी लिसनर को बहुत फर्क पड़ता है. तो हम सभी के जो ना चेहरे ऐसे लगता है मुरझा जाते हैं, जैसे कि कोई जिंदगी की कोई प्रिय चीज खो गई हो. और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर है इंडिया खड़गपुर, और ये 18 अगस्त 1951 में खुली थी आईआईटी. ओके, रितु गुप्ता.
0: अच्छा, खड़गपुर में. ओके, इसका मतलब दो आंसर्स आए, एक वेस्ट बंगाल और खड़गपुर शायद वेस्ट बंगाल में. आईआईटी वाज एस्टेब्लिश इन 1950 खड़गपुर. आपने भी कहा सना काना. और दिनेश शाह, गुड मॉर्निंग एट खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल. अच्छा, देखा ना, वो वेस्ट बंगाल में ही है. दिनेश शाह, थैंक यू. आशा भिमानी, द फर्स्ट ए आई आई टी खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल. लो, सभी ने राइट दे दिया है. गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, कहा है जबीन हेरानी. सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग. दे आर टू वेज टू गेट इनफ. वन इज टू कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर, द अदर डिजायर लेस एंड लेस. कहते एक तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जो भी है आप जिस चीज की इच्छा करते हैं, टू गेट इनफ बढ़ाते, वरना कम इच्छा, अपनी इच्छा को कम कर दो. सभी को नमस्कार. बिंदु फ्रॉम जयपुर, कल आप नहीं थी तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर घूमने आई तो सुन नहीं सकी थी प्रोग्राम. ओ बिंदु, मुझे लगा कि आपने कहा गुड रिडन्स. नहीं नहीं, ऐसा नहीं क्या है. वो बिंदु कैसे कह सकती है. और भरत गंगाराम, मौला आज़ाद ने उद्घाटन किया था आईआईटी का. रियली भरत. और जवाब है 1951.

0: बहुत खूब, हमने एक मुहावरा नहीं, एक्चुअली तो मंजुला गोरसिया का ही था, मैंने थोड़ा सा बदला है, मे बी इट्स ऑल राइट। पर अभी अभी मुझे एक मैसेज, बड़ा प्यारा मैसेज आया, अच्छा मैसेज है, इंटेलिजेंट मैसेज है, फ्रॉम डिम्पल शाह। कहती है ऑन अ डिफरेंट नोट प्रवीण जी, बिकॉज ऑफ यू एंड बेमिसाल अंदाज आवर पेरेंट्स स्टार्ट द मॉर्निंग हैप्पी एंड रेमिनिस अबाउट ओल्ड डेज, ओल्डन डेज। बिल्कुल डिम्पल, अगर ये गाने ना हों तो कैसे हम रेमिनिस करें, कैसे समझ पुराने ज़माने में क्या होता था, क्या करते थे। ये गानों के ज़रिए ही आपकी जो मेमोरी है ना ताज़ा होती है। दैट वे वी कैन सोर, बिल्कुल बिल्कुल किसी और दुनिया में चले जाते हैं। आप अपने वालदैन से पूछे, ऑफ कोर्स यू सी देम सो हैप्पी डिम्पल शाह, एंड आपको भी करना चाहिए अप्रिशिएट यही म्यूज़िक विद योर पेरेंट्स लव, ठीक है। और आपने कहा है कंग्रेचुलेशंस टू द चिल्ड्रन इन कैनेडा दैट मेड देयर पेरेंट्स प्राउड, धीरूभाई लखानी के बच्चों को का सुनकर। डिम्पल आपने बहुत अच्छी बात की है कि वालदैन कितने खुश होते हैं। अच्छा रसिला, मुझे नींद ना आए, मैंने अभी सुनाया है मुझे नींद ना आए, नहीं सुनाया था रसिला। और नींद उचाटना बिंदु, ओके नींद उचाटना, ओके मनहर पटेल क्या कहते हैं।
1: हेलो नमस्कार, केम छो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। आज मारे जरा ऊंदा गायन सांभरवा छे, जे छे पंख होती तो उड़ आती रे, पछी छे दूसरा सॉन्ग कुहू कुहू बोले कोयलिया, दोनों में से एक लगा दो। थैंक यू मनहर पटेल की सुमो।
0: कुहू कुहू बोले कोयलिया, आपने तो कभी सुना भी नहीं हुआ कोयल को, फिर भी आपने फरमाइश की है तो ऑफ कोर्स मैं ढूंढूंगी। ओके नींद में बड़बड़ाना क्या बात है, सोनल मोदा वेल डन। दिनेश क्या कहते हैं, दिनेश शाह हैं।
2: आपका प्रोग्राम सुनने के बाद नींद उठ जाती है, बहुत मजा आता है। दिनेश शाह
0: सो तो समाधि, मैं तो ये दिनेश शाह, मैं तो ये सुन के हैरान हो गई, पर यू आर सो राइट। अच्छा नींद आती भी हो ना, अगर प्रोग्राम अच्छा है ना तो उड़ जाती है। अब देखें आप किसी लेक्चरर को सुने, इतना बोरिंग होगा कि नहीं भी आनी ना नींद, नींद आ जाती है। लेकिन कोई और लेक्चर, कोई स्पीकर, वो इंटरेस्टिंग होगा, फास्ट पेस्ड उसकी होगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप चौकन्ना रहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। नींद में चलना ये आपने कहा था पहले। और लक्ष्मण, लड़की की शादी हो जाने के बाद सुख की नींद नहीं आती, आपने कहा आती, ऑफ कोर्स नॉट। लक्ष्मण सिंह बेचारी को 1000 मसाइल होते हैं। परवीन जी माय फेवरेट सॉन्ग, नाजनीन आई एम सो ग्लैड, थैंक यू फॉर द सिलेक्शन, क्लासिक हिट्स, माय गेस्ट फ्रॉम ओवरसीज लव्ड एवरी सिंगल सॉन्ग यू प्लेड, योर म्यूजिक मेड देयर विजिट ट्रूली स्पेशल। वेल देयर आर सो मेनी अदर सॉन्ग्स कमिंग अप, सो मेक देम सिट, ठीक है नाजनीन। और यहाँ हैं परवीन जी, गुड आफ्टरनून, आई जस्ट वॉन्ट टू से Indian film industry have all the songs on my words, Ranbir Banavara. जी बिल्कुल, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही तो सारे गाने हैं, अगर इंडस्ट्री ना होती तो क्या होता, समझ ये जेम सब न जाने कहाँ के कहाँ बिखर गए होते।
3: प्रवीण अस्सलाम वालेकुम, पता किसी किसी को नींद चलने की आदत है, किसी किसी में बोलने की आदत है नींद में छिंदर।
0: हाँ बड़बड़ाना, वो सोनल ने कहा था ना, वो नींद में बड़बड़ाता है।

0: Arfa from Ongata Rungai, what an immortal song. कहती हैं कि इस फिल्म में वी शांताराम और संध्या थे. कहती है संध्या अ ग्रेट डांसर. आपको पता है जल बिन मछली में भी वो थी. और इतने बरस काम करने के बाद जल बिन मछली तक शी वॉज सो यंग, शी वॉज जस्ट अ टीनेजर. कहती है इमॉर्टल नाकाबिले फरामोश ये नगमा. वाकई समीन क्या संगीत है और क्या ये एको, और किसी गाने में इस तरह का एको मैंने नहीं देखा. और लिसनर्स बहुत तारीफ कर रहे हैं किसकी, इनकी. और मैंने सोचा फिर से सुना दूं.
1: आ गया नींद से जाग गया, क्योंकि बात नींद की चल रही है. कहते हैं जिन्हें नींद नहीं आती ना उन्हें ही मालूम है सुबह होने में कितने जमाने लगते हैं. जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ही मालूम है सुबह होने में कितने जमाने लगते हैं. एक नींद है जो रात भर नहीं आती, एक नींद है जो रात भर नहीं आती, और एक नसीब है जो ना जाने कब से सो रहा है. चलते चलते दुख की रात नींद नहीं आती, दुख की रात नींद नहीं आती, और सुख की रात कौन सोता है. हंस मरते हुए

0: भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, यही जिंदगी का फंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, अब कल मिलूंगा, धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छे अजय पाल। अब चलते हैं सोनल मोदा, नींद के ऊपर एक शायरी है, नींद से क्या शिकायत जो आती नहीं रात भर। कहते कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। वाह सोनल, दैट वाज अ गुड वन, अच्छी चॉइस आपकी। मनर पटेल क्या कहते हैं?
2: हेलो, हस्बैंड वाइफ है ने, तो बहुत झगड़ते होते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसका पति कुछ भी बोले नहीं, उसकी वाइफ बोलने नहीं देती थी, मत बोलो मत बोलो। तो उसका पति रात को है ने सोने के टाइम के थोड़ा आधा घंटे के बाद वो बड़बड़ाने लगता है, कुछ ना कुछ है, उसकी वाइफ को गाली देवे कुछ ना कुछ हो जाता था। तो सुबह में उसकी वाइफ ने बोला, रात को तुम मेरे साथ क्यों झगड़ते हो और बड़बड़ करते हो? तो उसका हस्बैंड बोलता है, दिन में तो तू बोलने नहीं देती है, तो रात में तो मैं एक अकेला फ्री तो हो सकता हूँ और मेरा दिल ठंडा कर सकता हूँ। थैंक यू मनर पटेल की सुमो।
1: वाह, रात के बढ़ाने की भी इजाजत लेनी होगी।

मुझे पता नाइद अख्तर रितु गुप्ता की फेवरेट हैं, गॉड ब्लेस यू, उन्होंने मुझे कहा है अमीन आपको भी। जयश्री आपने कहा है कि हाजी अली, लेकिन आज तो कहते हैं कि रात 10 बजे तक खुली है हाजी अली की दरगाह, आपने कहा कि बंद कर दी गई है, आई एम नॉट श्योर।

तेरे सुर और मेरे गीत क्या बात है। समय दो और गाने आपके लिए चुन चुन के रखे हैं, एंजॉय कीजिएगा। आगे निलूफर आ रही हैं, पूरे तीन घंटे का प्रोग्राम वो भी एंजॉय करें। ईस्ट एफएम से सुई मत हिलाएं। कल मेरी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अल्लाह हाफिज़।

This is Retro to Right Now with Niloufar on East FM, Kenya's premier Asian mix, and it is 13 minutes past one. What is happening? It is the second day of the week. I think Tuesday is one day I feel, you feel a bit lost. Ke pata nahi chal raha hai. Abhi to matlab hafte ki shuruaat hui hai. Abhi pura hafta baki hai. Kya ho raha hai? Main kahan hoon aur kyun hoon? मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं ट्यूसडे को. आपको होता है क्या? मे बी दैट कुड बी पार्ट ऑफ आर दिल से कह दो टुडे व्हिच इज हैपनिंग इन दिस आवर. आई आल्सो हैव वंडरफुल म्यूजिक एज ऑलवेज, यू नो, ब्रिंगिंग बैक द नाइस लेट 90s, द अर्ली 2000s, एंड आल्सो सम न्यू यू नो ट्रैक्स, रीहैशेस एंड सो मच मोर. फॉर नाउ आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट ट्रैक दैट इज इन द वोकल्स ऑफ श्रेया घोषाल, मौसम. बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है. आई हैव गॉट अलका याग्निक आल्सो लाइंड अप इन द 90s. आफ्टर दैट and some more fantastic music right up till 4 p.m. Stay with me. This is East FM.

0: को हमेशा ही झूठ लगता है यार।
1: Shahrukh Khan and Aishwarya Rai, I'm not too sure how many people were happy to see them as brother sister on screen, but Josh was a good film. I think it had a beautiful storyline. I remember back in the time, you know, I was passing Film City, and Film City is like a whole area in Mumbai, in Goregaon, ahead of Goregaon, you know, there's RA Milk Colony, uske aage aap jaoge to pura Film City isliye use kehte hai ki ek alag hi duniya hai. Ek bar aap gate ke andar jaoge, you'll find माउंटेन्स, रिवर्स, मंदिर, मस्जिद, ग्राउंड्स, लिटरली सब कुछ है वहाँ पे। फिल्मों की शूटिंग होती है, सीरियल्स की शूटिंग होती है, एंड सालों से ये फिल्म सिटी चल रहा है। इट्स अंडर गवर्नमेंट ऑब्वियसली दैट स्पेस, एंड जोश फिल्म का बहुत बड़ा सेट लगा था। दे ट्राई टू रिक्रिएट गोवा देयर फॉर सर्टन सीन्स। या दैट्स द मेमोरी आई हैव विद जोश। व्हाट अबाउट यू? इट्स 34 मिनट्स पास्ट 1। दिल से कह दो इज कमिंग अप फॉर नाउ। नेक्स्ट इज राहत फतेह अली खान विद इश्क रिस्क। दिस इज अ रेट्रो टू राइट नाउ विद निलोफर ऑन ईस्ट एफएम, केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स।
2: संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: All right, so I like the fact that how everyone has a different concept of different days of the week. Okay, and I've got another message here. It is very, very interesting. You said for you also it's like a Monday because somewhere you feel like you did a bit easy and suddenly Monday has come with full of challenges. Okay, that's Sakshi. I've got another message here from... okay, you haven't mentioned. You're saying for you somewhere it is Wednesday. It's saying you're not my day at all. Everything feels delayed and slow. Okay, Kritika is saying mine is actually Tuesday as well. Finally, I feel like, you know, that's one day where everything just seems off. Even though I'm charged up on Monday for work, Tuesday everything just goes crashing down and life just doesn't seem happening. I think a lot of you are connecting with Tuesday. Oh my God, I thought I was the only crazy one over here. Okay, I have also got another message here saying, I don't know about different days, but for now, I'm just surviving, waiting for it to end, honestly. I feel you. Don't worry. Hum saath saath hai on East FM. Thank you so much for your contribution, your wonderful energy. Honestly, the way I was feeling in the morning, up till now, I'm not feeling like that, at least half now. I'm feeling so good talking to you. I'm feeling good being at work and playing some good music and, you know, having that laugh. So I must say, thank you. Thank you very much.
1: East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: East FM pe mangalwar ki khabrein, pehle khabron ki surkhiyan. अडन डुवाले अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से कॉम्पनसेशन देने की कार्रवाई पे शक अमेरिका ईरान अमन समझौते पे मुख्तलिफ खबरें माथा करुआ की युगेंडा दाखिल होने की कोशिश नाकाम खबरें तफसील से हेल्थ के मुशीर अडन डुवाले का कहना है कि लाइकीपिया एयरबेस पे इबोला के अमरीकी मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर का विरोध न करके वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे आपने सुनवाई के दौरान कहा कि सेंटर आबादी से दूर है रहने वालों को कोई खतरा नहीं अमरीकी माली मदद से बनने वाले आइसोलेशन सेंटर से सूबा साउथ के पार्लियामेंट के सदस्य कैरोलियो मोंडी ने कहा है कि डेमोन्स्ट्रेशंस में जख्मी हुए शहरियों को रकम देने का अमल शफाफ नहीं है यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है कई एक को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया जो पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में अब तक 1000 को इबोला की बीमारी हुई है 254 मौतें हो चुकी हैं 100 मरीज सेहतयाब हुए हैं वक्त पे इबोला की तशखीस इलाज मुमकिन करती है अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात का पहला मरहला सफल लगता है सलाहकारों यानी मीडिएटर्स का कहना है कि 60 दिनों में रोड मैप तैयार हो जाएगा लेबनन में जंग बंदी मुमकिन है मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं यूएसए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर असासे इंस्पेक्ट करने की इजाजत देगा हॉर्मुज समुद्री रास्ते को खोलने पर भी पेशरफ्त हुई है मगर ईरान की डेलीगेशन रस्मी तौर पर दस्तखत करने से पहले रवाना हो गई और केन्या की मारूफ वकील और पहले की जस्टिस मंत्री माथा करुआ को युगेंडा दाखिल होने से रोक दिया गया है बयान युगेंडा की लॉ सोसाइटी ने जारी किया है माथा करुआ एरियस लुकवागो की दिफा करने इंटेबे पहुंची थी जहां आपको हिरासत में ले लिया गया आपकी टीम ने कहा है कि उनसे संपर्क कट चुका है लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या के सदर चार्ल्स कंजामा ने तशवीश जाहिर की है कि उन्हें इजाजत मिल गई युगेंडा दाखिल होने की मगर कारुआ को रोका गया यूएस फेडरल रिजर्व के पहले के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन 100 बरस की उम्र के बाद वफात पा गए हैं आप पार्किंसंस डिजीज के मरीज थे आलमी अखबार ग्रीनस्पैन की याद में तारीफों के पुल बांध रहे हैं आपने अमरीकी मईशत यानी इकोनॉमी को दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों के दौर में तरक्की दिलाई 20 साल एलन ग्रीनस्पैन ने इकोनॉमी को मजबूत और डॉलर को अच्छी हालत में रखा अमरीकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का पद सदर के बाद सबसे बड़ा है इथियोपिया की हुक्मरान प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने 438 सीटों पर जीत हासिल कर ली है 501 نشستوں پہ چناؤ ہوا تھا مخالفی امیدواروں کے حمایتیوں کو ہراساں کیا گیا آروپ دھاندلی کے بھی لگے مگر اب پردھان ابھی محمد نئی سرکار بنانے کے لیے تیار ہیں اکتوبر میں آپ شپت لیں گے مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ ایتھیوپیا میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے اور یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے لیبر پارٹی کے رہنما کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا سٹارمر کو دو سال پہلے بڑی اکثریت سے عوام نے جتوایا تھا مگر یو کے کی اکانومی کی حالت بگڑتی گئی اور جنتا کا ساتھ کم ہو گیا سٹارمر 10 برسوں میں چھٹے پردھان منتری ہیں مدت ختم ہونے سے پہلے ریزائن کرنے والے یہ تھیں آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
1: Kickstart your afternoon with retro classics, Bollywood vibes, and the hottest hits right now. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: All right, we are already in the second hour of the show. I have no idea where 1 hour went. Like, what is going on? ये ऐसा नहीं लग रहा है ऊपर वाले ने भगवान ने ऐसे वो घड़ी को ऐसे घुमा दिया है कि भागो अब तुम इंसानों भागते रहो और जागते रहो.

Very pure playing for East FM, Kenya's premier Asian mix. This is The Satellites with Vishal. And बहुत सारे सही जवाब आ गए हैं अब for the mix up challenge. आज थोड़ा सा हमने change किया था जहाँ पे मैंने आपको एक movie दी थी and instead of giving me two songs, you have to give me three songs taken off the movie रंग दे बसंती. But हम kindness के बारे में बात कर रहे हैं. Let's get into that. So what if one act of kindness could start a chain reaction you never get to see? A stranger helps you, you're in a better mood, you help someone else, they do the same, it spreads further as we realize. Most acts of kindness don't come with applause or recognition. The impact often continues quietly from person to person. Kindness is one of the few things you can give away and still end up with more of. सिंपल सी चीज़ है काइंडनेस के बारे में हम बात करें. अक्सर हम सोशल मीडिया पे सब लोग हैं एंड सोशल मीडिया पे यू नो व्हेन यू वॉचिंग अ कपल ऑफ वीडियोज रील्स जो भी बहुत लोग वीडियो डालते हैं अबाउट काइंडनेस एंड आई बिलीव दैट दे आर स्प्रेडिंग दैट काइंडनेस इज स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड. And I think we do get motivated by these videos and हम अक्सर उसके बाद motivation के बाद कुछ चंद seconds के बाद और चंद मिनटों के बाद भूल जाते हैं. And I think kindness is the most important thing. अगर कोई बंदा आपके साथ आपको kindness दिखा रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, आपको कुछ मदद कर रहा है and could be anything, जैसे मैंने बोला कि किसी को रोड क्रॉस करवाना and किसी की मदद करना, किसी के लिए लिफ्ट रोक लेना, किसी के किसी को directions बता देना, you know, small small things that make a big difference. So आपसे मैंने पूछा था कौन से ऐसे act of kindness have you come across. कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपकी मदद की हो इन एनीथिंग. शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 0701106106 एंड यस नॉट ट्रांसलेट बट मिक्स बी चैलेंजेस ऑन. एंड आज की मूवी आपको तीन गाने बताने हैं एंड दैट इज टेकन ऑफ द मूवी रंग दे बसंती. रंग दे बसंती मूवी के तीन गाने.

0: वाह यार क्या गाना है लुका छुपी. इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स टेकन ऑफ द मूवी रंग दे बसंती प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड हम बात कर रहे हैं अबाउट मीटिंग्स एंड द लॉन्ग आवर्स. सो व्हाई आर देयर ऑलवेज 10 पीपल इन द रूम बट ओनली 2 डूइंग द टॉकिंग. Many meetings include people who don't need to be there, don't contribute, and spend most of the time checking emails or are on their phone. Some attend because they're required, others aren't sure why they were invited. Meanwhile, the conversation keeps drifting further away from its original purpose. If your meeting has more spectators than participants, you might be running a live podcast. Aisa mere ko lagta hai. सो आपका क्या ख्याल है अबाउट लॉन्ग मीटिंग्स. अगर 15 मिनट में डिसीजन मेकिंग इज व्हाई मीटिंग्स आर हेल्ड, ठीक है. सो अगर कोई एजेंडा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मीटिंग रखी दैट यू नो व्हाट टुडे वी हैव टू अचीव दिस, एंड अगर हम 15 मिनट में या 10 मिनट में वो डिसीजन पे पहुंच जाते हैं एंड वी अग्रीड दैट यू नो व्हाट ओके दिस इज इट लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट स्टिल वो डिस्कशन चलता ही रहेगा. अगर 10 मिनट में 15 मिनट में डिसीजन हो गया तो एंड द मीटिंग. आई गॉट इन अ मैसेज फ्रॉम रसेल जी फ्रॉम किसुमु एंड एक चीज़ उन्होंने अभी बोली है अबाउट काइंडनेस. हम काइंडनेस के बारे में बात कर रहे थे इन द फर्स्ट आवर एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू रिस्पेक्ट. सो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट आई फील दैट इट्स रियली इम्पोर्टेंट. अक्सर हम लोग फ़ोन पे होते हैं एंड वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू अस फेस टू फेस. सो पुटिंग योर फोन डाउन एंड एक्चुअली लिसनिंग व्हेन समवन इज टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट एंड आई टोटली एग्री. Not paying attention to someone when he is looking, he or she is looking at you in the eye and speaking to you, वो फिर थोड़ा सा disrespect का मामला आ जाता है.
1: Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: That's playing for News FM, Kenya's Premier Asian Mix. This is the City Lights with Vishal. And hum baat kar rahe hain about the meetings that take long. And I mentioned earlier that, you know what, agar decision 10 minute mein ho sakta hai, toh 2-3 ghante ki meeting kyu karni? Imagine karo that you've gone on to make a decision. Ek simple sa agenda hai that aapko टीम के लिए कोई एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, टू मोटिवेट द टीम, एंड देन यू एंड अप डिस्कसिंग हॉलिडे प्लान्स फॉर यू नो योरसेल्फ और द अदर पीपल जिन्होंने कुछ मेंशन किया है. आई मीन इट डजंट मेक सेंस. सिंपल सी चीज़ है, अगर एजेंडा क्लियर है तो उसमें डिसीशन आराम से हो सकता है. बट अगेन, फॉर दैट एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज. अक्सर मीटिंग्स इसीलिए होती हैं दैट यू नो व्हाट, पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज, बट दे आर डिसीजन मेकर्स हु डोंट इवन लिसन. टाइम फॉर योर ट्रांसलेट चैलेंज, जहां पे आपको मेरे को ये मूवी बतानी है इन हिंदी एंड द मूवी साउंड्स लाइक दिस इन इंग्लिश. सो 5 वर्ड की मूवी है ये, ठीक है, 5 वर्ड की मूवी है ये, एंड इट्स फेयरली ईजी, एंड इट साउंड्स लाइक दिस इन इंग्लिश. आई हैव फॉलन इन लव विद यू. आई हैव फॉलन इन लव विद यू. कौन सी मूवी है ये? 5 वर्ड मूवी इन हिंदी. 3rd वर्ड आपको बता देता हूँ, वो लव ही है. That is your clue. The 3rd word in Hindi is also love. 5 word movie, I Have Fallen In Love With You in English. It released in the year 2012.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.

पुलिस साहब क्या बोल रहे सब लोग एमवे बंटा है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट ए